0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच रविवार 14 जून को एक नए शांति समझौते पर सहमति की घोषणा का स्वागत किया है और इसे हिंसक टकराव की समाप्ति और आपसी सुलह की राह में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। यूएन महासचिव के प्रवक्ता की ओर से जारी एक वक्तव्य के अनुसार, यह सहमति तत्काल व स्थायी युद्ध विराम को अमल में लाने, होर्मुज जलडमरू मध्य मार्ग को फिर से खोलने और वार्ता को आगे बढ़ाने का फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यूएन प्रमुख ने समझौते के लिए वार्ता के समर्थन में पाकिस्तान, कदर, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और अन्य क्षेत्रीय देशों द्वारा निभाई गई भूमिका की गहरी सराहना की। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हुए शुरुआती समझौते का स्वागत किया है। एजेंसी दोनों पक्षों के साथ मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सत्यापन जैसे अहम मुद्दों पर ठोस कदम तय करने में मदद करने के लिए तैयार है। मीडिया खबरों के अनुसार समझौता ज्ञापन में अधिकतम 60 दिनों की बातचीत के बाद एक अंतरिम समझौते तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। बातचीत में ईरान के यूरेनियम संवर्धन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। ईरान को यह भी दोहराना होगा कि उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं।

0: नहीं है। समझौता ज्ञापन की अन्य शर्तों में सभी जहाजों के लिए हुर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना और ईरान पर लगे अमेरिकी व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों में ढील देना शामिल है। इसके 14 बिंदुओं में सबसे पहले लेबनान सहित सभी मोर्चा पर सैन्य कार्यवाही को तत्काल व स्थायी रूप से समाप्त करने की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने लेबनान में जारी संकट के बीच राष्ट्रीय प्राधिकरणों और साझेदारों के साथ मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने और विश्वसनीय सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास तेज किए हैं। संगठन के मुताबिक ये व्यवस्थाएं देश भर के समुदायों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
1: संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने लेबनान में जारी संकट के बीच राष्ट्रीय एजेंसियों और साझेदारों के साथ मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयास तेज किए हैं, साथ ही सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करने और विश्वसनीय सूचना तक पहुंच भी सुनिश्चित की जा रही है। संगठन ने कहा कि ये व्यवस्थाएं देश भर के समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेबनान में इजरायली सैन्य बलों और हिजबुल्ला संगठन के बीच कुछ महीने पहले हिंसक टकराव भड़क उठा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए, अनेक स्कूल क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके हैं और 5 लाख बच्चे कक्षाओं से बाहर हैं। शिक्षा के सभी स्तरों पर 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हुई है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 17 स्कूल पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और 100 से अधिक स्कूलों को नुकसान पहुंचा है।
0: अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन उनामा ने हैरात शहर के जिब्राइल क्षेत्र में 9 जून को उस कार्यवाही पर भी गंभीर चिंता जताई जिसमें लेबनान की सुरक्षा दलों ने ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में 6 और 7 जून के बीच कम से कम 30 महिलाओं को गिरफ्तार किया। महिलाओं की मनमानी गिरफ्तारियों के विरोध में एकत्र हुए स्थानीय निवासियों के विरुद्ध कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने तालिबान प्रशासन से एक बार फिर आग्रह किया है कि वह महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने वाली सभी नीतियों व प्रथाओं को वापस ले ले। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
2: अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन यूनामा ने हेरात शहर में महिलाओं की गिरफ्तारियों और प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यूनामा के अनुसार सत्तारूढ़ तालिबान के सदाचार के प्रसार और अवगुणों की रोकथाम विभाग व पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में 6 और 7 जून के बीच हेरात में कम से कम 30 महिलाओं को गिरफ्तार किया था। हालांकि इन महिलाओं को 8 जून को रिहा कर दिया गया, लेकिन अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उप विशेष प्रतिनिधि और यूनामा की कार्यवाहक प्रमुख जॉर्जेट गैग्नोन ने कहा है कि देश में किसी महिला की गिरफ्तारी उससे जुड़ी सामाजिक बदनामी को जन्म देती है, जिसके कारण रिहाई के बाद भी महिलाओं को अपने परिवारों और समुदायों में हिंसा, बहिष्कार, मनोवैज्ञानिक दबाव और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ सकता है।
0: कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC के पूर्वी हिस्से में इबोला वायरस से संक्रमित लोगों के उपचार के लिए स्वास्थ्य देखभाल क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि स्थानीय समुदायों में भरोसे का अभाव इबोला के प्रकोप पर नियंत्रण पाने में सबसे बड़ी बाधा है। DRC में घातक इबोला वायरस के फैलाव के बीच आने वाले दिनों में बच्चों में भी संक्रमण मामलों में उछाल दर्ज किए जाने की आशंका बढ़ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
1: संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने आगाह किया है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में घातक इबोला वायरस के फैलाव के बीच आने वाले दिनों में बच्चों में भी संक्रमण मामलों में उछाल दर्ज किए जाने की आशंका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हर दिन अलग अलग इलाकों में नए संक्रमण मामलों की शिनाख्त की जा रही है, जिससे इस प्रकोप का बड़ा स्तर नजर आता है। इसकी एक बड़ी वजह DRC के पूर्वी हिस्से में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही है। पूर्वी DRC के इतुरी प्रांत के अलावा उत्तर कीवू प्रांत के नए इलाकों में भी ये मामले सामने आए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बताया है कि इबोला एक घातक संक्रमण है, लेकिन इसके फैलाव के तरीके कोविड 19 वायरस से अलग हैं। ये आमतौर से शरीर से निकलने वाले द्रव्यों के संपर्क में आने से फैलता है। इसके मद्देनजर यूनिसेफ ने कहा है कि जो बच्चे स्कूल जा सकते हैं उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए और फिलहाल स्कूल बंद किए जाने की कोई वजह नहीं है।
0: भारत में तंबाकू सेवन की लत से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाले लोगों को निशुल्क राष्ट्रीय परामर्श सेवा सही मार्गदर्शन और सहारा दे रही है। ये सेवा विशेषज्ञों की सलाह, नियमित संपर्क और कई भारतीय भाषाओं में सहायता के जरिए लोगों को तंबाकू सेवन की लत से बाहर आने में मदद करती है। इस सेवा में संपर्क करना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। यह एक व्यवस्थित तंबाकू त्याग योजना के तहत काम करती है। तंबाकू उपयोग करने वाले लोग प्रशिक्षित परामर्शदाताओं से बातें करते हैं, जो पहले उनका पंजीकरण एवं आकलन करते हैं, फिर उन्हें चरणबद्ध तरीके से तंबाकू छोड़ने में मदद देते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
2: भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में हर वर्ष तंबाकू उपयोग के कारण लगभग 13 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तंबाकू छोड़ने की चाहत रखने वाले लोगों की मदद के लिए मंत्रालय की निशुल्क राष्ट्रीय तंबाकू परामर्श सेवा फोन नंबर 1800112356 के माध्यम से सलाह और सहयोग उपलब्ध कराती है। इस हेल्पलाइन पर प्रशिक्षित परामर्शदाता प्रमाण आधारित सहायता, व्यक्तिगत योजना और नियमित संपर्क के जरिए लोगों को तंबाकू की लत से बाहर आने में मदद देते हैं। ये सहायता अंग्रेजी, हिंदी और 15 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
0: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में शुक्रवार को बोर्गो डायलोगिस कार्य शिविर के प्रतिभागियों ने संत पापा लियो चौदहवें का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। इस अवसर पर संत पापा ने कहा कि बोर्गो डायलोगिस कार्य शिविर उस प्रक्रिया का पहला कदम है जिसका लक्ष्य ऐसे विश्व में नैतिक नेतृत्व को नवीकृत करना है जो आज टूटी फूटी है और अपनी ऐतिहासिक जड़ों को भूली हुई लगती है। रोम शहर के परिसर में कास्तल गोंदोल्फो स्थित बोर्गो लाउदातो सी उद्यान में बोर्गो डायलोगिस अर्थात संवाद का स्थल शीर्षक से पहली बार कार्य शिविर सम्पन्न हुआ। संत पापा ने कहा कि प्रतिभागियों ने उन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जो कि वर्तमान विश्व में तर्क संगत हैं और जिनके प्रति कैथलिक कलीसिया भी चिंतित है। इनमें संत पापा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मानवता के साथ इसका संबंध, वृद्धावस्था और सत्ता, खेल और कूटनीति तथा धारणीय विकास का भविष्य गिनाया। संत पापा ने कहा कि उक्त कार्य शिविर में भाग लेकर प्रतिभागियों ने उनकी उस मनोकामना को पूरा किया है जिसे उन्होंने हाल ही में प्रकाशित अपने विश्व पत्र मनीफिका उमानितास में व्यक्त किया था और वह यह कि अपने युग के सभी स्त्री पुरुषों के साथ संवाद करना, उनके साथ मिलकर जन कल्याण और सभी के लिए सम्मानजनक जीवन को बढ़ावा देना। संत पापा ने कहा कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से अंधे हो चले हैं। एक मिथ्या व्यावहारिक सोच हमें अपने इतिहास की जड़ों को काटने के लिए उकसाती है, मानो अतीत से अलग एक तरह की नई रचना की शुरुआत करना संभव हो। उन्होंने कहा, जो लोग जरूरी नैतिक सिद्धांतों का हवाला देते हैं वे भी इस ऐतिहासिक शून्यवाद में पड़ सकते हैं और उन्हें भी यह भ्रम हो सकता है कि 20वीं सदी के अत्याचार फिर कभी नहीं हो सकते। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि बोर्गो डायलोगिस कैथलिक कलीसिया के दर्शन और दृष्टि पर संरचित संवाद शिविर है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सुनकर वैश्विक एकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा, बाबुल की मीनार बनाने के प्रलोभन के समक्ष जो सबसे कमजोर लोगों की कीमत पर लाभ की पूजा करना सिखाता तथा इंसानियत को खत्म करने के खतरे को बढ़ाता है, हमें नए यरूशलेम अर्थात प्रेम की सभ्यता के निर्माण में योगदान देने के लिए बुलाया गया है जिसमें प्रेम ही आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत हो। उन्होंने कहा, प्रेम की सभ्यता किसी एक या शानदार कृत्य से नहीं बल्कि वफादारी के छोटे छोटे और सुनिश्चित कृत्यों के जोड़ से उत्पन्न होगी जो मानवता को समाप्त करने के खिलाफ एक मजबूत दीवार का काम करते हैं। इसी वजह से यह सोचना सही रहेगा कि हम सब अपने अपने तरीके से प्रेम की सभ्यता के निर्माण में कैसे सहयोग कर सकते हैं। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर में गुरुवार को संत पापा लियो चौदहवें के नेतृत्व में स्वर्गीय कार्डिनल कामिलो रुइनी के आदर में अंत्येष्टि याग संपन्न किया गया। दशकों तक इतालवी कलीसिया के एक महत्वपूर्ण धर्माधिकारी रहे कार्डिनल रुइनी का निधन 95 वर्ष की आयु में विगत मंगलवार को हो गया था। दिवंगत कार्डिनल रुइनी के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संत पापा लियो ने उन्हें एक समझदार और मेहनती चरवाहा निरूपित किया जिन्होंने छोटे छोटे कामों में भी और सर्वाधिक बड़ी जिम्मेदारी वाले कामों में भी कलीसिया की सेवा की तथा जो ईश प्रजा और अपने धर्माध्यक्ष भाइयों को महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षणों में भी एक मार्गदर्शक रूप में रास्ता दिखाते रहे। स्वर्गीय कार्डिनल रुइनी ने 1991 से 2008 तक रोम धर्म प्रांत के प्रतिधर्माध्यक्ष तथा रोम स्थित संत जॉन लातरान महागिरजाघर के प्रधान पुरोहित रूप में अपना कार्यभार निभाया था। 1991 से 2007 तक आप इतालवी धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष रूप में भी सेवाएं अर्पित करते रहे थे। ख्रिस्तियाग प्रवचन में संत पापा लियो चौदहवें ने कार्डिनल रुइनी द्वारा कलीसिया की सेवा में गुजारे उन कई वर्षों के लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जिसके दौरान कार्डिनल रुइनी ने अपनी सोच, समझ और विवेक से इटली की कलीसिया के लिए कई योजनाओं और पहलों को अंजाम दिया था। अजरबैजान की राजधानी बाकू में वैटिकन के वरिष्ठ कार्डिनल तथा धर्मों के बीच संवाद संबंधी परम धर्मपीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल जॉर्ज जेकब कुवाकर्ड ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव से मुलाकात की तथा उनके प्रति मेजबान देश द्वारा दिए गए हार्दिक स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया।
15 से 19 जून तक धर्मों के बीच संवाद संबंधी परमधर्म पीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल जॉर्ज जेकब कुवाकर अजरबैजान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। गुरुवार 18 जून को बाकू में काउकासिको के शेख उल इस्लाम अल्लाह शुक्र पशाजादे के आवास पर कार्डिनल ने अपने प्रभाषण में परमधर्म पीठ और अजरबैजान के धार्मिक समुदायों को जोड़ने वाली लंबे समय से चली आ रही मैत्री के लिए शुक्रिया अदा किया। अजरबैजान के प्रेरित प्रतिनिधि मानिवर व्लादिमीर फेकेते, परमधर्म पीठ राजदूत इलगर मुख्तारोव और स्थानीय ईसाई एवं यहूदी समुदायों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्डिनल कुवाकर ने 2002 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय और 2016 में संत पापा फ्रांसिस की अजरबैजान प्रेरित यात्राओं का स्मरण दिलाया, जिसके दौरान हुई मुलाकातों और पहलों द्वारा दोनों सच्चाइयों के बीच संबंधों को मजबूत किया गया। कार्डिनल ने इस बात पर जोर दिया कि द्वितीय वैटिकन महासभा द्वारा गैर ईसाई धर्मों के साथ कलीसिया के रिश्ते पर घोषणा नोस्त्रा एताते की शिक्षा से प्रेरित होकर ईसाइयों और मुसलमानों ने इस तरह शांति की सेवा में साथ चलने की कोशिश की है, यह मानते हुए कि हम एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में 2011 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौता और विगत वर्ष धार्मिक सहयोग एवं परस्पर समझदारी पर हस्ताक्षरित ज्ञापन इस बात को साबित करते हैं कि बातचीत सिर्फ विचारों का लेन देन नहीं है, बल्कि गहरी समझ, विश्वास और सहयोग का रास्ता है। रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम WFO की हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यमन, सूडान और फिलिस्तीन भुखमरी के केंद्र बन रहे हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम WFO ने विश्व के 13 ऐसे देशों को गिनाया है जिन्हें भूख के हॉटस्पॉट बताया गया है और जहां लाखों लोग क्षुधा पीड़ित हैं। इनमें यमन, सूडान और फिलिस्तीन सहित उत्तर पूर्वी नाइजीरिया, बोर्नो और सोमालिया भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी का प्रमुख कारण इन क्षेत्रों में जारी सशस्त्र संघर्ष और युद्ध हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

gatte, diligenter, die pure.

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच रविवार 14 जून को एक नए शांति समझौते पर सहमति की घोषणा का स्वागत किया है और इसे हिंसक टकराव की समाप्ति और आपसी सुलह की राह में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। यूएन महासचिव के प्रवक्ता की ओर से जारी एक वक्तव्य के अनुसार, यह सहमति तत्काल व स्थायी युद्ध विराम को अमल में लाने, होर्मुज जल डमरू मध्य मार्ग को फिर से खोलने और वार्ता को आगे बढ़ाने का फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यूएन प्रमुख ने समझौते के लिए वार्ता के समर्थन में पाकिस्तान, कदर, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और अन्य क्षेत्रीय देशों द्वारा निभाई गई भूमिका की गहरी सराहना की। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हुए शुरुआती समझौते का स्वागत किया है। एजेंसी दोनों पक्षों के साथ मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सत्यापन जैसे अहम मुद्दों पर ठोस कदम तय करने में मदद करने के लिए तैयार है। मीडिया खबरों के अनुसार समझौता ज्ञापन में अधिकतम 60 दिनों की बातचीत के बाद एक अंतरिम समझौते तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। बातचीत में ईरान के यूरेनियम संवर्धन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। ईरान को यह भी दोहराना होगा कि उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। समझौता ज्ञापन की अन्य शर्तों में सभी जहाजों के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना और ईरान पर लगे अमेरिकी व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों में ढील देना शामिल है। इसके 14 बिंदुओं में सबसे पहले लेबनान सहित सभी मोर्चा पर सैन्य कार्यवाही को तत्काल व स्थायी रूप से समाप्त करने की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने लेबनान में जारी संकट के बीच राष्ट्रीय प्राधिकरणों और साझेदारों के साथ मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करने और विश्वसनीय सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास तेज किए हैं। संगठन के मुताबिक ये व्यवस्थाएं देश भर के समुदायों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
3: संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था यूनेस्को ने लेबनान में जारी संकट के बीच राष्ट्रीय एजेंसियों और साझेदारों के साथ मिलकर शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के प्रयास तेज किए हैं, साथ ही सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करने और विश्वसनीय सूचना तक पहुंच भी सुनिश्चित की जा रही है। संगठन ने कहा कि ये व्यवस्थाएं देश भर के समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेबनान में इजरायली सैन्य बलों और हिजबुल्ला संगठन के बीच कुछ महीने पहले हिंसक टकराव भड़क उठा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए, अनेक स्कूल क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके हैं और 5 लाख बच्चे कक्षाओं से बाहर हैं। शिक्षा के सभी स्तरों पर 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हुई है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार अब तक 17 स्कूल पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और 100 से अधिक स्कूलों को नुकसान पहुँचा है।
2: अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन उनामा ने हैरात शहर के जिब्राइल क्षेत्र में 9 जून को उस कार्यवाही पर भी गंभीर चिंता जताई, जिसमें लेबनान की सुरक्षा दलों ने ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में 6 और 7 जून के बीच कम से कम 30 महिलाओं को गिरफ्तार किया। महिलाओं की मनमानी गिरफ्तारियों के विरोध में एकत्र हुए स्थानीय निवासियों के विरोध कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। संयुक्त राष्ट्र मिशन ने तालिबान प्रशासन से एक बार फिर आग्रह किया है कि वह महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने वाली सभी नीतियों व प्रथाओं को वापस ले ले। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
4: अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन यूनामा ने हेरात शहर में महिलाओं की गिरफ्तारियों और प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यूनामा के अनुसार सत्तारूढ़ तालिबान के सदाचार के प्रसार और अवगुणों की रोकथाम विभाग व पुलिस अधिकारियों ने कथित तौर पर निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में 6 और 7 जून के बीच हेरात में कम से कम 30 महिलाओं को गिरफ्तार किया था। हालांकि इन महिलाओं को 8 जून को रिहा कर दिया गया, लेकिन अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उप विशेष प्रतिनिधि और यूनामा की कार्यवाहक प्रमुख जॉर्जेट गैग्नोन ने कहा है कि देश में किसी महिला की गिरफ्तारी उससे जुड़ी सामाजिक बदनामी को जन्म देती है, जिसके कारण रिहाई के बाद भी महिलाओं को अपने परिवारों और समुदायों में हिंसा, बहिष्कार, मनोवैज्ञानिक दबाव और सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ सकता है।
2: कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC के पूर्वी हिस्से में इबोला वायरस से संक्रमित लोगों के उपचार के लिए स्वास्थ्य देखभाल क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि स्थानीय समुदायों में भरोसे का अभाव इबोला के प्रकोप पर नियंत्रण पाने में सबसे बड़ी बाधा है। DRC में घातक इबोला वायरस के फैलाव के बीच आने वाले दिनों में बच्चों में भी संक्रमण मामलों में उछाल दर्ज किए जाने की आशंका बढ़ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
3: संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने आगाह किया है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में घातक इबोला वायरस के फैलाव के बीच आने वाले दिनों में बच्चों में भी संक्रमण मामलों में उछाल दर्ज किए जाने की आशंका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हर दिन अलग अलग इलाकों में नए संक्रमण मामलों की शिनाख्त की जा रही है, जिससे इस प्रकोप का बड़ा स्तर नजर आता है। इसकी एक बड़ी वजह DRC के पूर्वी हिस्से में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही है। पूर्वी DRC के इतुरी प्रांत के अलावा उत्तर कीवू प्रांत के नए इलाकों में भी ये मामले सामने आए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बताया है कि इबोला एक घातक संक्रमण है, लेकिन इसके फैलाव के तरीके COVID-19 वायरस से अलग हैं। ये आमतौर से शरीर से निकलने वाले द्रव्यों के संपर्क में आने से फैलता है। इसके मद्देनजर यूनिसेफ ने कहा है कि जो बच्चे स्कूल जा सकते हैं उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए और फिलहाल स्कूल बंद किए जाने की कोई वजह नहीं है।
2: भारत में तंबाकू सेवन की लत से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वाले लोगों को निशुल्क राष्ट्रीय परामर्श सेवा सही मार्गदर्शन और सहारा दे रही है। ये सेवा विशेषज्ञों की सलाह, नियमित संपर्क और कई भारतीय भाषाओं में सहायता के जरिए लोगों को तंबाकू सेवन की लत से बाहर आने में मदद करती है। इस सेवा में संपर्क करना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। यह एक व्यवस्थित तंबाकू त्याग योजना के तहत काम करती है। तंबाकू उपयोग करने वाले लोग प्रशिक्षित परामर्शदाताओं से बातें करते हैं, जो पहले उनका पंजीकरण एवं आकलन करते हैं, फिर उन्हें चरणबद्ध तरीके से तंबाकू छोड़ने में मदद देते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
4: भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में हर वर्ष तंबाकू उपयोग के कारण लगभग 13 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तंबाकू छोड़ने की चाहत रखने वाले लोगों की मदद के लिए मंत्रालय की निशुल्क राष्ट्रीय तंबाकू परामर्श सेवा फोन नंबर 1800112356 के माध्यम से सलाह और सहयोग उपलब्ध कराती है। इस हेल्पलाइन पर प्रशिक्षित परामर्शदाता प्रमाण आधारित सहायता, व्यक्तिगत योजना और नियमित संपर्क के जरिए लोगों को तंबाकू की लत से बाहर आने में मदद देते हैं। ये सहायता अंग्रेजी, हिंदी और 15 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

पहला कदम है जिसका लक्ष्य ऐसे विश्व में नैतिक नेतृत्व को नवीकृत करना है जो आज टूटी फूटी है और अपनी ऐतिहासिक जड़ों को भूली हुई लगती है। रोम शहर के परिसर में कास्टल गोंदोल्फो स्थित बोर्गो लाउदातो सी उद्यान में बोर्गो डायलोगेस अर्थात संवाद का स्थल शीर्षक से पहली बार कार्य शिविर सम्पन्न हुआ। संत पापा ने कहा कि प्रतिभागियों ने उन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जो कि वर्तमान विश्व में तर्क संगत हैं और जिनके प्रति कैथलिक कलीसिया भी चिंतित है। इनमें संत पापा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मानवता के साथ इसका संबंध, वृद्धावस्था और सत्ता, खेल और कूटनीति तथा धारणीय विकास का भविष्य गिनाया। संत पापा ने कहा कि उक्त कार्य शिविर में भाग लेकर प्रतिभागियों ने उनकी उस मनोकामना को पूरा किया है जिसे उन्होंने हाल ही में प्रकाशित अपने विश्व पत्र मैग्निफिका उमानितास में व्यक्त किया था, और वह यह कि अपने युग के सभी स्त्री पुरुषों के साथ संवाद करना, उनके साथ मिलकर जन कल्याण और सभी के लिए सम्मानजनक जीवन को बढ़ावा देना। संत पापा ने कहा कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से अंधे हो चले हैं। एक मिथ्या व्यावहारिक सोच हमें अपने इतिहास की जड़ों को काटने के लिए उकसाती है, मानो अतीत से अलग एक तरह की नई रचना की शुरुआत करना संभव हो। उन्होंने कहा, जो लोग जरूरी नैतिक सिद्धांतों का हवाला देते हैं वे भी इस ऐतिहासिक शून्यवाद में पड़ सकते हैं, और उन्हें भी यह भ्रम हो सकता है कि 20वीं सदी के अत्याचार फिर कभी नहीं हो सकते। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि बोर्गो डायलोगेस कैथलिक कलीसिया के दर्शन और दृष्टि पर संरचित संवाद शिविर है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर सुनकर वैश्विक एकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा, बाबुल की मीनार बनाने के प्रलोभन के समक्ष जो सबसे कमजोर लोगों की कीमत पर लाभ की पूजा करना सिखाता तथा इंसानियत को खत्म करने के खतरे को बढ़ाता है, हमें नए यरूशलेम अर्थात प्रेम की सभ्यता के निर्माण में योगदान देने के लिए बुलाया गया है जिसमें प्रेम ही आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत हो। उन्होंने कहा, प्रेम की सभ्यता किसी एक या शानदार कृत्य से नहीं बल्कि वफादारी के छोटे छोटे और सुनिश्चित कृत्यों के जोड़ से उत्पन्न होगी जो मानवता को समाप्त करने के खिलाफ एक मजबूत दीवार का काम करते हैं। इसी वजह से यह सोचना सही रहेगा कि हम सब अपने अपने तरीके से प्रेम की सभ्यता के निर्माण में कैसे सहयोग कर सकते हैं। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर में गुरुवार को संत पापा लियो 14वें के नेतृत्व में स्वर्गीय कार्डिनल कामिल्लो रुइनी के आदर में अंत्येष्टि याग संपन्न किया गया। दशकों तक इतालवी कलीसिया के एक महत्वपूर्ण धर्माधिकारी रहे कार्डिनल रुइनी का निधन 95 वर्ष की आयु में विगत मंगलवार को हो गया था। दिवंगत कार्डिनल रुइनी के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संत पापा लियो ने उन्हें एक समझदार और मेहनती चरवाहा निरूपित किया जिन्होंने छोटे छोटे कामों में भी और सर्वाधिक बड़ी जिम्मेदारी वाले कामों में भी कलीसिया की सेवा की तथा जो ईश प्रजा और अपने धर्माध्यक्ष भाइयों को महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षणों में भी एक मार्गदर्शक रूप में रास्ता दिखाते रहे। स्वर्गीय कार्डिनल रुइनी ने 1991 से 2008 तक रोम धर्म प्रांत के प्रति धर्माध्यक्ष तथा रोम स्थित संत जॉन लातरान महागिरजाघर के प्रधान पुरोहित रूप में अपना कार्यभार निभाया था। 1991 से 2007 तक आप इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष रूप में भी सेवाएं अर्पित करते रहे थे। ख्रिस्तियाग प्रवचन में संत पापा लियो 14वें ने कार्डिनल रुइनी द्वारा कलीसिया की सेवा में गुजारे उन कई वर्षों के लिए ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया जिसके दौरान कार्डिनल रुइनी ने अपनी सोच, समझ और विवेक से इटली की कलीसिया के लिए कई योजनाओं और पहलों को अंजाम दिया था। अजरबैजान की राजधानी बाकू में वैटिकन के वरिष्ठ कार्डिनल तथा धर्मों के बीच संवाद संबंधी परम धर्म पीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल जॉर्ज जेकब कुवाकर्ड ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव से मुलाकात की तथा उनके प्रति मेजबान देश द्वारा दिए गए हार्दिक स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। 15 से 19 जून तक धर्मों के बीच संवाद संबंधी परम धर्म पीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल जॉर्ज जेकब कुवाकर्ड अजरबैजान की आधिकारिक यात्रा पर हैं। गुरुवार 18 जून को बाकू में काउकासिको के शेख उल इस्लाम अल्लाह शुक्र पशाजादे के आवास पर
कार्डिनल ने अपने प्रभाषण में परमधर्म पीठ और अजरबैजान के धार्मिक समुदायों को जोड़ने वाली लंबे समय से चली आ रही मैत्री के लिए शुक्रिया अदा किया।

अजरबैजान के प्रेरित प्रतिनिधि मान्यवर व्लादिमीर फेकेते, परम धर्म पीठी राजदूत इलगर मुख्तारोव और स्थानीय ईसाई एवं यहूदी समुदायों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्डिनल कुवाकड ने 2002 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय और 2016 में संत पापा फ्रांसिस की अजरबैजान प्रेरित यात्राओं का स्मरण दिलाया, जिसके दौरान हुई मुलाकातों और पहलों द्वारा दोनों सच्चाइयों के बीच संबंधों को मजबूत किया गया। कार्डिनल ने इस बात पर जोर दिया कि द्वितीय वैटिकन महासभा द्वारा गैर ईसाई धर्मों के साथ कलीसिया के रिश्ते पर घोषणा नोस्त्रा एताते की शिक्षा से प्रेरित होकर ईसाइयों और मुसलमानों ने इस तरह शांति की सेवा में साथ चलने की कोशिश की है, यह मानते हुए कि हम एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में 2011 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौता और विगत वर्ष धार्मिक सहयोग एवं परस्पर समझदारी पर हस्ताक्षरित ज्ञापन इस बात को साबित करते हैं कि बातचीत सिर्फ विचारों का लेन देन नहीं है, बल्कि गहरी समझ, विश्वास और सहयोग का रास्ता है। रोम स्थित खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम WFO की हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार यमन, सूडान और फिलिस्तीन भुखमरी के केंद्र बन रहे हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम WFO ने विश्व के 13 ऐसे देशों को गिनाया है जिन्हें भूख के हॉटस्पॉट बताया गया है और जहां लाखों लोग क्षुधा पीड़ित हैं। इनमें यमन, सूडान और फिलिस्तीन सहित उत्तर पूर्वी नाइजीरिया, बोर्नो और सोमालिया भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी का प्रमुख कारण इन क्षेत्रों में जारी सशस्त्र संघर्ष और युद्ध हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर।

0: जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है,

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नबियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

0: मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, डर मानव के जीवन की वह मनोभावना है जिसके द्वारा हर कोई आतंकित रहता है। इस डर के कई रूप और कई कारण हो सकते हैं। हम में से हर किसी को मौत का डर भयभीत करता है। किसी को अपने प्रिय जनों को खोने का डर है। कोई अपने धन, अपने व्यवसाय या कोई कीमती वस्तु को खोने से आतंकित है, तो वहीं कई हैं जो अपनी इज्जत को लेकर, तो कितने ही ऐसे हैं जो अपने इस सोच से भयभीत हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे इत्यादि इत्यादि। अपने में व्याप्त इन डरों के कारण आज कितने ही लोग हैं जो अपनी जिंदगी खुलकर जीने में असक्षम हैं। इस भांति मानव के जीवन में विभिन्न डरों और भयों का होना जिंदगी को एक तरह से कुंठित बना देती है और डर के कारण अपने जीवन को खुलकर ना जी पाना व्यक्तियों के जीवन में एक तरह का मलाल उत्पन्न करता है कि काश मैं डर से मुक्त और अधिक स्वतंत्र और एक बेहतर जीवन जिया होता। श्रोताओं, वर्ष के 12वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम डर की विषय वस्तु को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि वह कौन सी बात है जो हमारे मन और दिल में डर उत्पन्न करती है। उस डर के कारण हम अपने जीवन को किस रूप में संचालित करते हैं। क्या हम में व्याप्त डर हमें दब्बू बना देता है जिससे हम जीवन की सच्ची और न्यायपूर्ण बातों को घोषित करने में झिझक कर रह जाते हैं।
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए उनसे नहीं डरो, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में दो गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उसमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में अनचाहे डर के मनोभावों से मुक्त होने में मदद करें जिससे हम अपने जीवन के महत्व को जान सकें और उसे निडरता में दूसरों के लिए जी सकें जिसके द्वारा ईश्वरीय नाम की महिमा और स्तुति होती है। श्रोताओं, मानव के जीवन में डर का एक मुख्य कारण शारीरिक पीड़ा है जो हमें अनायास ही भयभीत कर देता है। इस शारीरिक दुख की परिकल्पना के प्रभाव को हम यीशु ख्रिस्त के जीवन में भी पाते हैं जो उन्हें थोड़े समय के लिए विचलित करता है। गेतसेमानी बारी में यीशु की पीड़ा हमें उनके मनोवैज्ञानिक रूप में प्रभावित होने की बात बयां करती है, जहां हम उनके पसीने को लोहू की बूंदों में परिणत पाते हैं। लेकिन जीवन की ऐसी परिस्थिति में वे अपनी सारी मनोभावनाओं को पिता की इच्छा अनुरूप घटित होने को समर्पित करते हैं। श्रोताओं, नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें ईश्वर के कार्यों के लिए समर्पित नबी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों के द्वेषपूर्ण विचारों का जिक्र करता है जो नबी को मार डालने के फिराक में हैं, क्योंकि वह सच्चाई घोषित करते हुए उन्हें चुनौती प्रदान करता है। लेकिन नबी अपने शत्रुओं के व्यवहार और उनके छल कपट से तनिक भी विचलित और भयभीत नहीं है, क्योंकि उसका विश्वास ईश्वर में मजबूती से बना है। ईश्वर में अपने घोर विश्वास के कारण वह ईश्वर को अपनी ओर से शत्रुओं के विरुद्ध लड़ता हुआ पाता है। ईश्वर अपने विश्वासी भक्तों के लिए ऐसा ही करते हैं और ईश्वर पर विश्वास और भरोसा करने वालों को किसी बात का भय और डर नहीं लगता है। श्रोताओं, आज का पहला पाठ दुनिया में पाप की स्थिति को व्यक्त करता है, जहां अच्छाई, सच्चाई और न्याय की बातें हमेशा से दबा और कुचल दी जाती हैं। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिए गए आज के दूसरे पाठ में हम सृष्टि में पाप के प्रवेश के बारे में सुनते हैं। एक आदम के आज्ञा भंग द्वारा दुनिया में मृत्यु आई। प्रथम आदम के पाप के कारण हम दुनिया में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को पाप के प्रभाव में पाते हैं। पाप के कारण आदम ने अपने को झाड़ी में छुपा लिया था। अतः भय का एक मुख्य कारण हमारे लिए पाप और पाप करने की प्रवृत्ति है। इस भांति मानव में डर को हम प्रथम आदम में सृष्टि के शुरू से ही पाते हैं, जो पाप के कारण उत्पन्न हुआ है। पाप और गलत कार्यों के कारण हम स्वयं अपने को डर की स्थिति में पाते हैं, क्योंकि यह हम में एक शंका अविश्वास उत्पन्न करती है कि हमारा क्या होगा। वही पुत्र ईश्वर दूसरे आदम में पिता हमें पापों से क्षमा करते और हमें शंका अविश्वास तथा भय से मुक्त करते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि हमें नहीं डरने को कहा जाता है। यीशु हमें शरीर को चोट पहुंचाने वालों से नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा दोनों को चोट पहुंचाने वाले से डरने को कहते हैं। अर्थात वे हमें पाप से डरने को कहते हैं, जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों का सर्वनाश करता है। आज के प्रभु वचन हमें अपने मानवीय जीवन के मूल्य को देखने और पहचानने का निमंत्रण देता है। सृष्टि में हम दुनिया की सारी चीजों, जीव जंतुओं से महान हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने अनुरूप बनाया और जीवन दिया है। उन्होंने हमें जीवन देकर यूं ही नहीं छोड़ दिया है, बल्कि वे हमारी चिंता और हमारी देखरेख करते हैं। श्रोताओं, अपने बेटे यीशु ख्रिस्त में पिता ईश्वर ने हमारी सुधि ली है और वे सदैव हमारी देखरेख करते हैं। यह हमारे लिए उनका प्रेम है और इसके प्रत्युत्तर में हमें उन्हें स्वीकारने को कहा जाता है। ईश्वर को स्वीकार करने का अर्थ हमारे लिए उनके द्वारा दी गई संहिता और प्रेम के नियमों का अनुपालन करना है। ईश्वर के नियमों और आज्ञाओं का अनुपालन करना हमें जीवनदाता ईश्वर से संयुक्त करता है, जिसे हम अपने कार्यों, बातों, व्यवहार और आचरणों में व्यक्त करते हैं। हमारा ऐसा करना हमें निर्भय बनाता है, जहां हम अपने मानवीय जीवन को आनंद और शांति की परिपूर्णता में जीते हैं, जो हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त से विनय करें कि वे हमें विभिन्न तरह की शंकाओं और बेचैनियों से मुक्त करें, जो हम में डर के मनोभाव उत्पन्न करते हैं, जिससे हम उनके संग अपनी एकता में स्वतंत्रता पूर्ण जीवन यापन कर सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। एक अध्ययन में पाया गया है कि सच्चाई, उद्देश्य एवं समुदाय की खोज के कारण कैथोलिक धर्म में दिलचस्पी बढ़ रही है। अमेरिका के 20 कैथोलिक धर्म प्रांतों में वयस्कों की ख्रिस्तीय दीक्षा के ऑर्डर ओसिया में 2000 से अधिक प्रतिभागियों पर हुए एक नए राष्ट्रीय अध्ययन से पता चलता है कि कैथोलिक धर्म में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, खासकर उन युवाओं में जो सच्चाई, उद्देश्य और आध्यात्मिक गहराई की तलाश में हैं। 18 जून को शिकागो धर्म प्रांत ने 19 दूसरे धर्म प्रांतों के साथ मिलकर यह सर्वे प्रकाशित किया। इस सर्वे में फरवरी एवं मई 2026 के बीच ओसिया में हिस्सा लेने वाले 2127 लोगों के अनुभवों की जांच की गई। इसमें शामिल धर्म प्रांतों ने वयस्क विश्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम में रिकॉर्ड स्तर पर हिस्सा लेने की बात कही। अध्ययन में पाया गया कि चर्च जाने वाले लोग मुख्य रूप से दो बड़े कारणों से प्रेरित होते हैं, अच्छाई, सच्चाई, मन की शांति, मकसद की खोज तथा कैथोलिक कलीसिया की धर्म विद्या, शिक्षाएं और 2000 साल पुरानी परंपरा के प्रति आकर्षण। जवाब देने वालों में से 28% ने कहा कि कैथोलिक धर्म की ओर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था, जबकि दूसरे प्रोटेस्टेंट समुदाय के थे या कैथोलिक जो अपनी दीक्षा पूरी कर रहे थे। शोध में पाया गया कि आध्यात्मिक प्रेरणा राजनीतिक या सामाजिक बातों से कहीं अधिक थी। 77% ने अच्छाई में बढ़ने की बात बताई, 76% ने सच्चाई की गहरी समझ चाही और 72% ने मन की शांति की तलाश बताई। अध्ययन ने डिजिटल सुसमाचार प्रचार की बढ़ती भूमिका पर भी जोर दिया। जवाब देने वालों में से कई ने कैथोलिक धर्म को समझने में मदद के लिए प्रेयर ऐप्स, पॉडकास्ट, वीडियो और सोशल मीडिया कंटेंट जैसे ऑनलाइन सामग्रियों को श्रेय दिया। इस बीच कुछ प्रतिभागियों ने चर्च जाने में कई रुकावटें भी बताईं। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि धर्म प्रांतों और पल्लियों को व्यक्तिगत सहयोग, विश्वास की खोज के लिए स्पष्ट रास्ते और कलीसिया में स्वागत के बाद निरंतर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेखकों के अनुसार निष्कर्षों से पता चलता है कि आज बहुत से लोग कैथोलिक कलीसिया से मुख्य रूप से पारिवारिक परंपरा या विवाह के माध्यम से नहीं, बल्कि अर्थ, सच्चाई और ईश्वर के साथ गहरे रिश्ते की व्यक्तिगत खोज के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं। हांगकांग और मकाओ के धर्माध्यक्षों ने रोम की अपनी अदलिमीना प्रेरित यात्रा के दौरान आभार, मिशनरी नवीनीकरण और सिनोडलिटी के जीवित अनुभव के बारे में बात की और पोप लियो 14वें एवं वैटिकन के विभागों के साथ अपनी मुलाकात को विश्वव्यापी कलीसिया के साथ गहरे जुड़ाव का पल बताया। उनकी ये बातें ऐसे समय में आई जब दोनों धर्म प्रांत अपनी खास वर्षगांठ मना रहे हैं। मकाओ धर्म प्रांत अपनी स्थापना के 450 साल पूरे होने की खुशी मना रहा है, वहीं हांगकांग अपने धर्म प्रांत की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: सिर्फ ईश्वर का प्यार ही हमें सच्चा और पूर्ण आनंद दे सकता है। संत पापा लियो 14वें ने यह बात अमेरिका राज्य ओहायो में स्टूबेनविले की फ्रांसिस्कन विश्वविद्यालय में आयोजित 50वें स्टूबेनविले ग्रीष्मकालीन युवा सम्मेलन को भेजे गए एक वीडियो संदेश में कहा। संत पापा ने उनका अभिवादन कर यह भी याद दिलाया कि इस साल संत फ्रांसिस की मौत की 800वीं सालगिरह है। यह देखते हुए कि यह सम्मेलन स्टूबेनविले की फ्रांसिस्कन विश्वविद्यालय आयोजन कर रही है, संत पापा ने कहा कि उन्हें लगता है कि आज के युवाओं के लिए संत फ्रांसिस का जो संदेश हो सकता है उस पर सोचना सही होगा, खासकर सच्ची शांति और पूर्ण आनंद के बारे में। संत पापा ने कहा कि अगर कोई 13वीं सदी में असीसी की सड़कों पर संत फ्रांसिस से मिलता तो वे लोगों को शांत और प्यार भरी मुस्कान के साथ देखकर कहते, पाचे एबेने, अर्थात शांति और सब अच्छा हो। संत पापा ने युवाओं को खुद से पूछने के लिए कहा, क्या मैं उन लोगों के लिए सच्ची शांति चाहता हूँ जो मेरे संपर्क में आते हैं। संत पापा ने कहा कि संत फ्रांसिस ने जिस खुशी की बात कही थी वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या स्क्रीन के सामने घंटों बिताने से नहीं मिलती। ऐसी गतिविधियां अक्सर मूल्यवान समय बर्बाद करती हैं, जिसका उपयोग

अपना संदेश समाप्त किया और संत पापा लियो 14 में आज पाविया और संत अंजेलो लोदी जानो की प्रेरितिक दौरे पर हैं। वे दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते हुए 2:45 बजे क्रोविनो में कुस रुग्बी फील्ड में उतरेंगे और तुरंत कार से नेशनल सेंटर फॉर अंकोलॉजिकल हाइड्रोथेरेपी अस्पताल के लिए रवाना होंगे। वहां संत पापा अस्पताल के मैनेजरों, मेडिकल स्टाफ और इलाज कर रहे कुछ बच्चों के साथ उनके माता पिता से मुलाकात करेंगे। उसके बाद कार से सीएलडी ओरो में संत पेत्रुस महागिरजा घर जाएंगे। वहां वे संत अगुस्टीन के अवशेषों को श्रद्धांजलि देने के बाद धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और परमानेंट डीकनों से मिलकर उन्हें अपना संदेश देंगे। फिर महागिरजा घर से निकलकर संत पापा विक्टोरिया चौक में स्थानीय विश्वासियों से मुलाकात करेंगे और अपना संदेश देंगे। फिर शाम को संत अंजेलो लोदी जानो के लिए उड़ान भरेंगे। वहां वे संत अंतोनी एबोट और संत फ्रांसिस्का काब्रिनी महागिरजा घर में धन्य संस्कार की आराधना करेंगे और वहां उपस्थित विश्वासियों को संत पापा अपना संदेश देंगे। उसके बाद संत पापा 7:45 बजे संत अंजेलो लोदी जानो से वाटिकन के लिए उड़ान भरेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, डर मानव के जीवन की वह मनोभावना है जिसके द्वारा हर कोई आतंकित रहता है। इस डर के कई रूप और कई कारण हो सकते हैं। हम में से हर किसी को मौत का डर भयभीत करता है, किसी को अपने प्रिय जनों को खोने का डर है, कोई अपने धन, अपने व्यवसाय या कोई कीमती वस्तु को खोने से आतंकित है, तो वहीं कई हैं जो अपनी इज्जत को लेकर, तो कितने ही ऐसे हैं जो अपने इस सोच से भयभीत हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे इत्यादि इत्यादि। अपने में व्याप्त इन डरों के कारण आज कितने ही लोग हैं जो अपनी जिंदगी खुलकर जीने में असक्षम हैं। इस भांति मानव के जीवन में विभिन्न डरों और भयों का होना जिंदगी को एक तरह से कुंठित बना देती है और डर के कारण अपने जीवन को खुलकर ना जी पाना व्यक्तियों के जीवन में एक तरह का मलाल उत्पन्न करता है कि काश मैं डर से मुक्त और अधिक स्वतंत्र और एक बेहतर जीवन जिया होता। श्रोताओं, वर्ष के 12वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम डर की विषय वस्तु को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की थाह लें कि वह कौन सी बात है जो हमारे मन और दिल में डर उत्पन्न करती है। उस डर के कारण हम अपने जीवन को किस रूप में संचालित करते हैं। क्या हम में व्याप्त डर हमें दब्बू बना देता है जिससे हम जीवन की सच्ची और न्यायपूर्ण बातों को घोषित करने में झिझक कर रह जाते हैं।
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए उनसे नहीं डरो, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ, जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में दो गौरैया नहीं बिकती, फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उसमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुत तेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूंगा।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में अनचाहे डर के मनोभावों से मुक्त होने में मदद करें जिससे हम अपने जीवन के महत्व को जान सकें और उसे निडरता में दूसरों के लिए जी सकें जिसके द्वारा ईश्वरीय नाम की महिमा और स्तुति होती है। श्रोताओं, मानव के जीवन में डर का एक मुख्य कारण शारीरिक पीड़ा है जो हमें अनायास ही भयभीत कर देता है। इस शारीरिक दुख की परिकल्पना के प्रभाव को हम यीशु ख्रिस्त के जीवन में भी पाते हैं जो उन्हें थोड़े समय के लिए विचलित करता है। गेतसेमानी बारी में यीशु की पीड़ा हमें उनके मनोवैज्ञानिक रूप में प्रभावित होने की बात बयां करती है, जहां हम उनके पसीने को लोहू की बूंदों में परिणत पाते हैं। लेकिन जीवन की ऐसी परिस्थिति में वे अपनी सारी मनोभावनाओं को पिता की इच्छा अनुरूप घटित होने को समर्पित करते हैं। श्रोताओं, नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें ईश्वर के कार्यों के लिए समर्पित नबी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों के द्वेषपूर्ण विचारों का जिक्र करता है जो नबी को मार डालने के फिराक में है, क्योंकि वह सच्चाई घोषित करते हुए उन्हें चुनौती प्रदान करता है। लेकिन नबी अपने शत्रुओं के व्यवहार और उनके छल कपट से तनिक भी विचलित और भयभीत नहीं है, क्योंकि उसका विश्वास ईश्वर में मजबूती से बना है। ईश्वर में अपने घोर विश्वास के कारण वह ईश्वर को अपनी ओर से शत्रुओं के विरुद्ध लड़ता हुआ पाता है। ईश्वर अपने विश्वासी भक्तों के लिए ऐसा ही करते हैं और ईश्वर पर विश्वास और भरोसा करने वालों को किसी बात का भय और डर नहीं लगता है। श्रोताओं, आज का पहला पाठ दुनिया में पाप की स्थिति को व्यक्त करता है, जहां अच्छाई, सच्चाई और न्याय की बातें हमेशा से दबा और कुचल दी जाती हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से लिए गए आज के दूसरे पाठ में हम सृष्टि में पाप के प्रवेश के बारे में सुनते हैं। एक आदम के आज्ञा भंग द्वारा दुनिया में मृत्यु आई। प्रथम आदम के पाप के कारण हम दुनिया में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को पाप के प्रभाव में पाते हैं। पाप के कारण आदम ने अपने को झाड़ी में छुपा लिया था। अतः भय का एक मुख्य कारण हमारे लिए पाप और पाप करने की प्रवृत्ति है। इस भांति मानव में डर को हम प्रथम आदम में सृष्टि के शुरू से ही पाते हैं, जो पाप के कारण उत्पन्न हुआ है। पाप और गलत कार्यों के कारण हम स्वयं अपने को डर की स्थिति में पाते हैं, क्योंकि यह हममें एक शंका अविश्वास उत्पन्न करती है कि हमारा क्या होगा। वही पुत्र ईश्वर दूसरे आदम में पिता हमें पापों से क्षमा करते और हमें शंका अविश्वास तथा भय से मुक्त करते हैं। श्रोताओं, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि हमें नहीं डरने को कहा जाता है। यीशु हमें शरीर को चोट पहुंचाने वालों से नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा दोनों को चोट पहुंचाने वाले से डरने को कहते हैं। अर्थात वे हमें पाप से डरने को कहते हैं, जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों का सर्वनाश करता है। आज के प्रभु वचन हमें अपने मानवीय जीवन के मूल्य को देखने और पहचानने का निमंत्रण देता है। सृष्टि में हम दुनिया की सारी चीजों, जीव जंतुओं से महान हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने अनुरूप बनाया और जीवन दिया है। उन्होंने हमें जीवन देकर यूं ही नहीं छोड़ दिया है, बल्कि वे हमारी चिंता और हमारी देखरेख करते हैं। श्रोताओं, अपने बेटे यीशु ख्रिस्त में पिता ईश्वर ने हमारी सुधि ली है और वे सदैव हमारी देखरेख करते हैं। यह हमारे लिए उनका प्रेम है और इसके प्रत्युत्तर में हमें उन्हें स्वीकारने को कहा जाता है। ईश्वर को स्वीकार करने का अर्थ हमारे लिए उनके द्वारा दी गई संहिता और प्रेम के नियमों का अनुपालन करना है। ईश्वर के नियमों और आज्ञाओं का अनुपालन करना हमें जीवनदाता ईश्वर से संयुक्त करता है, जिसे हम अपने कार्यों, बातों, व्यवहार और आचरणों में व्यक्त करते हैं। हमारा ऐसा करना हमें निर्भय बनाता है, जहां हम अपने मानवीय जीवन को आनंद और शांति की परिपूर्णता में जीते हैं, जो हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त से विनय करें कि वे हमें विभिन्न तरह की शंकाओं और बेचैनियों से मुक्त करें, जो हममें डर के मनोभाव उत्पन्न करते हैं, जिससे हम उनके संग अपनी एकता में स्वतंत्रता पूर्ण जीवन यापन कर सकें।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। एक अध्ययन में पाया गया है कि सच्चाई, उद्देश्य एवं समुदाय की खोज के कारण कैथोलिक धर्म में दिलचस्पी बढ़ रही है। अमेरिका के 20 कैथोलिक धर्म प्रांतों में वयस्कों की ख्रिस्ती दीक्षा के ऑर्डर ओसिया में 2000 से अधिक प्रतिभागियों पर हुए एक नए राष्ट्रीय अध्ययन से पता चलता है कि कैथोलिक धर्म में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, खासकर उन युवाओं में जो सच्चाई, उद्देश्य और आध्यात्मिक गहराई की तलाश में हैं। 18 जून को शिकागो धर्म प्रांत ने 19 दूसरे धर्म प्रांतों के साथ मिलकर यह सर्वे प्रकाशित किया। इस सर्वे में फरवरी एवं मई 2026 के बीच ओसिया में हिस्सा लेने वाले 2127 लोगों के अनुभवों की जांच की गई। इसमें शामिल धर्म प्रांतों ने वयस्क विश्वास प्रशिक्षण कार्यक्रम में रिकॉर्ड स्तर पर हिस्सा लेने की बात कही। अध्ययन में पाया गया कि चर्च जाने वाले लोग मुख्य रूप से दो बड़े कारणों से प्रेरित होते हैं, अच्छाई, सच्चाई, मन की शांति, मकसद की खोज तथा कैथोलिक कलीसिया की धर्म विद्या, शिक्षाएं और 2000 साल पुरानी परंपरा के प्रति आकर्षण। जवाब देने वालों में से 28% ने कहा कि कैथोलिक धर्म की ओर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उनका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था, जबकि दूसरे प्रोटेस्टेंट समुदाय के थे या कैथोलिक जो अपनी दीक्षा पूरी कर रहे थे। शोध में पाया गया कि आध्यात्मिक प्रेरणा राजनीतिक या सामाजिक बातों से कहीं अधिक थी। 77% ने अच्छाई में बढ़ने की बात बताई, 76% ने सच्चाई की गहरी समझ चाही और 72% ने मन की शांति की तलाश बताई। अध्ययन ने डिजिटल सुसमाचार प्रचार की बढ़ती भूमिका पर भी जोर दिया। जवाब देने वालों में से कई ने कैथोलिक धर्म को समझने में मदद के लिए प्रेयर एप्स, पॉडकास्ट, वीडियो और सोशल मीडिया कंटेंट जैसे ऑनलाइन सामग्रियों को श्रेय दिया। इस बीच कुछ प्रतिभागियों ने चर्च जाने में कई रुकावटें भी बताईं। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि धर्म प्रांतों और पल्लियों को व्यक्तिगत सहयोग, विश्वास की खोज के लिए स्पष्ट रास्ते और कलीसिया में स्वागत के बाद निरंतर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेखकों के अनुसार निष्कर्षों से पता चलता है कि आज बहुत से लोग कैथोलिक कलीसिया से मुख्य रूप से पारिवारिक परंपरा या विवाह के माध्यम से नहीं, बल्कि अर्थ, सच्चाई और ईश्वर के साथ गहरे रिश्ते की व्यक्तिगत खोज के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं। हांगकांग और मकाओ के धर्माध्यक्षों ने रोम की अपनी अदलिमीना प्रेरित यात्रा के दौरान आभार, मिशनरी नवीनीकरण और सिनोडलिटी के जीवित अनुभव के बारे में बात की और पोप लियो 14वें एवं वैटिकन के विभागों के साथ अपनी मुलाकात को विश्वव्यापी कलीसिया के साथ गहरे जुड़ाव का पल बताया। उनकी ये बातें ऐसे समय में आईं जब दोनों धर्म प्रांत अपनी खास वर्षगांठ मना रहे हैं। मकाओ धर्म प्रांत अपनी स्थापना के 450 साल पूरे होने की खुशी मना रहा है, वहीं हांगकांग अपने धर्म प्रांत की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है।
1: सिर्फ ईश्वर का प्यार ही हमें सच्चा और पूर्ण आनंद दे सकता है। संत पापा लियो 14वें ने यह बात अमेरिका राज्य ओहायो में स्टूबेनविले की फ्रांसिस्कन विश्वविद्यालय में आयोजित 50वें स्टूबेनविले ग्रीष्मकालीन युवा सम्मेलन को भेजे गए एक वीडियो संदेश में कहा। संत पापा ने उनका अभिवादन कर यह भी याद दिलाया कि इस साल संत फ्रांसिस की मौत की 800वीं सालगिरह है। यह देखते हुए कि यह सम्मेलन स्टूबेनविले की फ्रांसिस्कन विश्वविद्यालय आयोजन कर रही है, संत पापा ने कहा कि उन्हें लगता है कि आज के युवाओं के लिए संत फ्रांसिस का जो संदेश हो सकता है उस पर सोचना सही होगा, खासकर सच्ची शांति और पूर्ण आनंद के बारे में। संत पापा ने कहा कि अगर कोई 13वीं सदी में असीसी की सड़कों पर संत फ्रांसिस से मिलता तो वे लोगों को शांत और प्यार भरी मुस्कान के साथ देखकर कहते, पाचे एबेने, अर्थात शांति और सब अच्छा हो। संत पापा ने युवाओं को खुद से पूछने के लिए कहा, क्या मैं उन लोगों के लिए सच्ची शांति चाहता हूँ जो मेरे संपर्क में आते हैं। संत पापा ने कहा कि संत फ्रांसिस ने जिस खुशी की बात कही थी वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या स्क्रीन के सामने घंटों बिताने से नहीं मिलती। ऐसी गतिविधियां अक्सर मूल्यवान समय बर्बाद करती हैं, जिसका उपयोग प्रार्थना, सच्ची दोस्ती, पारिवारिक जीवन, विश्वास निर्माण और अध्ययन या खेल के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि केवल ईश्वर का प्रेम ही मानव हृदय को सच्चे आनंद से भर सकता है। संत पापा ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, अगर आपको लगता है कि प्रभु आपको किसी काम के लिए बुला रहे हैं, तो खुद को बंद ना करें और डर से पीछे ना हटें, बल्कि एक कदम आगे बढ़ें और प्रभु से कहें, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे भेजिए। अंत में संत पापा ने प्रतिभागियों को एक सफल सम्मेलन की शुभकामनाएं देते हुए अपना संदेश समाप्त किया। और संत पापा लियो 14वें आज पाविया और संत अंजेलो लोदीजानो की प्रेरितिक दौरे पर हैं। वे दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते हुए 3:45 बजे क्रोविनो में कुस रुग्बी फील्ड में उतरेंगे और तुरंत कार से नेशनल सेंटर फॉर अंकोलॉजिकल हाइड्रोथेरेपी अस्पताल के लिए रवाना होंगे। वहां संत पापा अस्पताल के मैनेजरों, मेडिकल स्टाफ और इलाज कर रहे कुछ बच्चों के साथ उनके माता पिता से मुलाकात करेंगे। उसके बाद कार से सीएलडी ओरो में संत पेत्रुस महागिरजाघर जाएंगे। वहां वे संत अगुस्टीन के अवशेषों को श्रद्धांजलि देने के बाद धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बहनों और परमानेंट डीकनों से मिलकर उन्हें अपना संदेश देंगे। फिर महागिरजाघर से निकलकर संत पापा विक्टोरिया चौक में स्थानीय विश्वासियों से मुलाकात करेंगे और अपना संदेश देंगे। फिर शाम को संत अंजेलो लोदीजानो के लिए उड़ान भरेंगे। वहां वे संत अंतोनी एबोट और संत फ्रांसिस्का काब्रिनी महागिरजाघर में धन्य संस्कार की आराधना करेंगे और वहां उपस्थित विश्वासियों को संत पापा अपना संदेश देंगे। उसके बाद संत पापा 7:45 बजे संत अंजेलो लोदीजानो से वाटिकन के लिए उड़ान भरेंगे। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।